0: कोकोनट कोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अद्गुरी।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: अब हाम्रै खुराही दाङमा अत्याधुनिक

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को देव स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: मध्यपश्चिम जान चेक यति बेला दिउँसोको 2 बजेको छ।

वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लगी एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड

राम राम संजय पांच बजे थार भाषक मध्य पश्चिम खबर में शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। नेपाल पत्रकार महासंघ दांग शाखा का संस्थापक सदस्य तथा वरिष्ठ साहित्यकार सुशील गौतम का 81 वर्ष को उमेर में साउन 24 गते निधन हो रहल। महासंघ दांग शाखा से आज शोक विज्ञप्ति जारी करते वहां का निधन प्रति गहिरो व्यक्त करगिल बा। महासंघ का संस्थापक सदस्य तथा पहिरो कार्य समिति का सदस्य समेत रलक गौतम दांग का पत्रकारिता में आर्थिक बीच में कलम चलिना पहिरो स्तंभ भेट वहां से दांग प्रकाशित होना दृष्टिकोण साप्ताहिक में नियमित स्तंभ लेखन का वस्तु का रेडियो स्वर्गद्वारी मार्फत अर्थतंत्र का विषय में विश्लेषणात्मक टिप्पणी करते दांग का पत्रकारिता का विषय विकास में महत्वपूर्ण योगदान पुर्याई रह। पत्रकारिता का अतिरिक्त साहित्यकार क्षेत्र में सक्रिय गौतम को दर्जन से धीर साहित्यिक कृति प्रकाशित बाटिन। वहां से निधन का दांग का पत्रकारिता व साहित्यकार क्षेत्र से एक अनुभवी एवं व्यक्तित्व गुमिलक महासंघ जना राखल। महासंघ दांग शाखा का अध्यक्ष संतोष सुवेदी से जारी विज्ञप्ति में दिगम्बर गौतम प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करती वहां का पुत्र एवं

गोर्खो राष्ट्रीय दैनिक अतिथि सम्पादक किशोर चन्द्र गौतम सहित शोक संतप्त परिवार जनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट करगिल बा। सामाजिक सेवामा सहयोग पुगिन उद्देश्यले रोल्पा कोट गाउँसे समाज दाङसे आज मानव सेवा आश्रममा सहयोग हस्तान्तरण गरिराखल। समाजका अध्यक्ष टेक बहादुर ओलीका अध्यक्षता तथा घोडा उपमहानगरपालिका दशका अध्यक्ष दीपक पाण्डेको बर पाहुना एवं नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल बस्नेतका विशिष्ट अतिथिमा सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न हुलो हो। कार्यक्रममा खाद्यान्न तथा मानव सेवा आश्रमका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री आश्रममा प्रतिनिधि सुस्मिता श्रेष्ठ हन हस्तान्तरण करगिल रह सहयोग ग्रहणकर्ती प्रतिनिधि श्रेष्ठ से समाज प्रति धन्यवाद ज्ञापन करती असीम सहयोगी दाता बापत संस्था चल्लक बटवारले वहां से 22 महीने नानी से 90 वर्ष उमेर समक 50 जन आश्रित लक बटवारले कार्यक्रममा बोल्ती प्रमुख अतिथि पाण्डेसी कोनो निहुनाकैकन आश्रम स्थलमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कोट गाउँसे समाजसेवक सहयोगको प्रशंसा गर्दै कार्यक्रममा समाजको सदस्य तथा स्थानीय समाजसेवीको उपस्थिति रलक रहल रह। कार्यक्रमको सहजीकरण रूपा कोट गाउँसे समाजको सचिव निशान ओली गर्न रह। श्री माध्यमिक विद्यालय सौदियार दाङमा निर्माणाधीन सभाहलका आय व्यय सार्वजनिक कर सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हुना हो रहल। यह भदौ 6 गते शनिबार बिहान 11 बजेसी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम धर्गिल घोर्से उपस्थितिका लागि सक्कु जैनलाग मूल आयोजक समिति आग्रह गरिराखल। सभाहल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुग्लको सभाका अनुगमन ओ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत शनिबार सम्पन्न करगिल बा। श्रीमत ज्ञान महाज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक निशान दाजु भट्टराईको अध्यक्षता सह संयोजक तथा घोराई सातका वडा अध्यक्ष खोपीराम चौधरीका बर पाहुना एवं पूर्व बीबीएस अध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक भीम प्रकाश खड्का घोराई सातका वडा सदस्य लौटन चौधरी ओ चीज बहादुर चौधरीका विशिष्ट आतिथ्यमा समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनवाई तयारी बैठक हुइरह्यो। उ अवसरमा महिला नेत्री कमला थापा सभाल निर्माण उपसमितिका अध्यक्ष मंगलराम डाङ्गी स्वास्थ्य उपसमितिका सह संयोजक भीमकान्त भण्डारी माझी सौडियारका विभाग अध्यक्ष ईश्वरी बुढा विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक नन्द बहादुर ओली चन्ददाता तर्फ से छबिलाल अधिकारी लगायतका आफ्नो धारणा धर्की सार्वजनिक सुनवाई हेर्न भव्य रूपमा सफल पारसकको तयारी कल्पना विचार धरल रह। कार्यक्रमको सञ्चालन सह सहायक प्रधानाध्यापक दामोदर पाण्डे करल रह। हुठा ताजु थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसञ्जयफी थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबरमस्य समाचार कक्ष कसकु संग्रहसँग मैशालिक राम चौधरी विदाईटु रिजी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरबाट अनुभव प्राप्त वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखरेल अब बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराही दाङमा।
1: डाक्टर अभ्यास पोखरेलद्वारा दिइने सेवाहरू
2: मेडिकल आईसीयू लगायत सुगर प्रेसर थाइराइडको चेकजाँच तथा उपचार सेवा,
3: छाती मुटु दम क्षयरोग सम्बन्धी बिरामीको चेकजाँच तथा उपचार,
2: मृगौला र कलेजो सम्बन्धी दीर्घकालीन रोगहरूको चेकजाँच तथा उपचार,
3: डेंगू मलेरिया निमोनिया टाइफाइड साथै विभिन्न रोगहरूको चेकजाँच तथा उपचार सेवा,
2: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू,
3: वरिष्ठ स्थिति तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
4: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
2: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
4: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
2: वरिष्ठ हात जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादवद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
4: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
2: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
5: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सड़क विभाग ओह्रालो घोराई जाँच, फोन नम्बर 0825362018।
6: मध्यपश्चिम ट्राङ्क्यात यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।